लगिए जित की ताप ये अपना सरकार ठीक करिए मंदान ना की चित्र मिल निहालिए जो सहना न हरिए ते देह पसटलिए किछ लाहे ऊपर करिए किछ लाहे ऊपर।

कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अर्जुनी सैभं गुरु प्रसाद चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख कौ कहना सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकार।

शाह शाहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन तृण कहत तव सर्वनाम कथ कवना

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत षड बिखै बिख खही, माया मोह परम पै भूले, सुत द्वारा स्यों प्रीत लगाय, एक उत्तम पंथ सुने हो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु राम दास राखो शरणाई, जब लो नहीं पागल लारुदा, तब लो ब्रह्म ते फिर ते बोतायो, कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट नहीं रे पछतायो, तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो, सो कहो टल गुर सेवी है एहन सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए, हो वै सिफत खस।

0: गुर सतगुर कै लग पैरी मैं सर्ब सुखां सुख पाया अमाली फिर सर्ब रहया पर पूरे जन नानक हर रंग माणिया अमाली गुर सतगुर कै लग पैरी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरुष

पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी, वाहिगुरु बोलो जी।

एक नारुना मेरे तन का बिरहा जिनो पिरो बिछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल परिया रूए आए ना सका तुझ कन प्यारी पेज ना सका कोई आओ सपागी नींदड़िए मत सो देखा सोए ते साहिब की बात जी आखे कहो नानक क्या दीजै सीस वड्डे।

परम सत्कार जो गुरु प्यारी गुरुस्वारी साध संगत जीओ, आप सारी संगत के चरणों में बेनती है कि गुरुद्वारा साहिब प्रबंधक कमेटी वालों आप जी के चरणों के बेनती है कि अज के दिन जो इस पावन दरबार के नीचे स्थान बनया है उत्थे अमृत का वाटा तैयार हो रहा है। सो सारे प्राणियों बेनती है जिन्होंने अमृत खंडे की पाहुल छकनी है वो कृपा करके समय के अनुसार नीचे चले जाण। अमृत का बाटा तैयार हो रहा है, आओ शब्द कीर्तन के नाल जुड़ना करिए।

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह साध संगत नूं निम्रता सहित बेनती है, जो संगत खांडे की पौल लैण वास्ते दरबार हाल में पहुंचिया ने उन्हां नूं बेनती है कि वह थले अमृत संचार हाल में पहुंचने की कृपालता करन। दोबारा फिर बेनती की जाती है, जो संगत खांडे की पौल लैण वास्ते दरबार हाल में पहुंचिया ने वह थले अमृत हाल संचार हॉल में पहुंचने की कृपालता करन जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहे।

कीर्तन करतवा। जिया दुजियो सब जाला, सब तेरा बस तेरा कृपला, तेरे कर आनंद दायित कर मानवता तेज अपनाप जर सर्वकला भरपूर दिसे जतकता। नाथ दस दास दया गए बिन बतास लो। अवन गुरु पाणी पिता।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक।

ना मनियार ना चूड़िया ना से वंगुड़िया जो सह कंठ न लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सौ रावण गईया हाँ दादी कै दर जावा।

सच्चा तो तख्त सिरसाह पातशाह निचल चौर छत पौड़ी वड्डा वड्डा पार।

सिदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परा प्रया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्यावहीं तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सरम निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना तू बार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेवहें जो सेवहें तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावहीं हर त्यावहीं तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फांसी जिन निरपो जैना हर निरपो त्याया जी तिनका पो सब गवासी जिन से बया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तपहें जपहें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत वरे जन नानक जी जो भावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहीं सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया हो सब तुझ ही माहे तुझ में दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल वियोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने।
जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जा अवर ना कोई। तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़े, भई रे निवासा पाणी पावक तिन्हे किया। पंकजों मोह पग नहीं चले, हम देखा तह डूबियले। मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जैनो तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम। मिल साध संगत भाजे केवल नाम, श्रृंजां लाग पव जल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कै रहौ, जप तप संजम धर्म नाक माया। सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा। शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संजम धर्म नाक माया। सेवा साध ना जन्या हर राया।

लाजयस गोविंदास्तोहार रामकली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह सेती मनवजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना अंगीकार ओह करे तेरा कर सब सवारना सबना गल्ला सम्रत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस दे सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैना भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है वसया जैना इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटह जिस दियाँ एहे वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तें सुकोआ तित घर अनहद बाजे आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा परे उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते बनी कहते पवित सतगुर रहा परे उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदामणी महला पंजवां थाल बिच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे
तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रखो और तारो तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म पसरो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनों जोग की तोई।

मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन थीवे हरे आ। वाहे गुरु।

सब सिखन को हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मानियो, जो प्रभु को मिल बोच है, राज करेगा खालसा, खुआर हो।

गई ना मन्निया, मरों बिसूर बसूरे, मैरो बंदी सब जग रुन्ना, रुन्ने वणो पंखेरू, इक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिरहों बिछोड़ी।

चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास जीओ महाराज सोढ़ी सुल्तान सच्चे पातशाह।

सो मत जल जानी जुगत, गुर अमरदास निज भगत है, देख दर्स पावो मुक्त। गुर अमरदास परसिए पोहम पातक बिनासै, गुर अमरदास परसिए

सजन सचा पद साहो सिर सहां देसाहो जिस पास बैठा सोहिए सब नांदा विसा

चले न चंगुल पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़रावा चटै पाए चाटा पाए वे खलो फसे कर जाए उड़ उड़रावा चटै पाए वे खलो फसे कर जाए उठिया कारण पूरे ताल आप छड़ धरती नाल